भगवान से वेरी ब्यूटीफुल पूजन विधि विधान नहीं लेट योर बॉडी बी द स्टोरहाउस ऑफ पूजा विधि विधान नहीं टू वर्शिप भगवान टू डू पूजा टू लिसन टू डिवाइन विधि द मंत्रस दैट इज चैंटेड बाय पंडित जी दैट नेम भगवान दो पुष्प चढ़ावे ऑफ अ फ्लावर्स टू द फीट ऑफ भगवान श्री राम लिसन टू माय डियर फ्रेंड्स builds your spirituality and builds that divine shakti that is formed within each and every one. And we get the same feeling as Hanuman Swami is experiencing.

प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन अवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।